0: दिवही एफएम नौ दिए के मेगाहर्ट्ज़
1: आम गोते गाहने की वारंग हंदार ने तेमी हैं बाय दोस्तों खांग अने बाय दोस्तों फोनों जे मेल तब फोनों बर्थडे से हंदार कुरंग अधि माँ उन दोगु कमे एक अमुक बिल ता दक्कन ता दो हकुएस हंदार नोने तेने करंट बिल फेम बिल फोन बिल कस दाहिन नुवान हंदाम विसुरे वगुतुं वगुता फाहिपे में दोरी को फ्यासावेस ट्रांसफर करेवे कैगें बिल कंडाला फा पेमेंट रिक्वेस्ट वेस फोनवे साड़ी दो गेमिंग रिचार्ज वेस हम फाहिपे अनलिमिटेड रीलोड अधिरास्टस फ्यासागे हुरिहा मुआमलाते फाहिपे में दोरी को फाहिपे वारा फाहि
2: अल-बकरा सूरत के 222 वन आयत के माना गया है। हम कशवरों अल्लाह गिना गिना तौबा वामी होंडे के लोभी बोलते हैं वे, अधि ताहिर वामी होंडे के विस एकलांगे लोभी बोलते हैं वे। मुखालफातों के तेरे एकं कमं अरागे नहीं फबाकं तत्तकों, नोत कुफ्फा फतकों गुनावंत ताहिर कुरुमुगे नियतु गया, नमादुगा मुस्लिम अला अल्लाह फियवा मशोल कुरुवनि वि कोम्मे कमकों एबही एनागे हित वेरिवा नमादुम बेरु खियाल तकुं एतेरे नुवत हित ताहिर कुरुमुगे एदुमुगा कुरेवे वुलुवकी एया नुला फुरिहम नमादे सहनुवाने शरुते मिकमुन दलील कुरनी अल्लाह तआलागे हजरतुग ए वुलुव लिबिगेंबा मतिवेरि दरज अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हुगे किबा रिवावेगेंवे हम कशवरुं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस कुरेवी मुस्लिम नुवत मोमिनु अला वुलुकु नुवत वुलु कुरुमुगा फहे एनागे मुनु दुवुमुं ए फेनायकु नुवत ए फेनुगे एम्मे फहु तिक्कायकु एनागे लुलुं ए कुफ्फाफेक नुवत कुफ्फाफ वेरिवणि विकमक बेलि कोम्मे कुफ्फाफै एनागे मुनु नुकुमे गेंदाने देन एनागे दे ए दुवुमुं ए फेनायकु नुवत ए फेनुगे एम्मे फहु तिक्कायकु एनागे दे अतुं अरागें नुवत कुरि कोम्मे फाफैं एनागे दे अतुं नुकुमे गेंदाने देन एनागे देफा दोवुमुं एफेनायकु नुवत एफेनुगे एम्मे फहुतिक्कायकु एनागे देफां हिंगा गोस्कुला कोम्मे कुफाफे नुकुमेगें दाने मिहें गोस फाफतकुं साफवेगें एना नुकुन्नाने उस्मान बुन अफ्फान रलियल्लाहु अन्हुगे किबा रिवावेगें वे एकलेगे फान विदालुवे तिमं कलेगे फान मि वुलु कुरेविगुत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वुलु कुरेवितं तिमं कलेगे फान दिकेवडागा तिमि देन विदालुवे मिगुत वुलु को फिमीहकं एनागे इस्वे गोस्फवा फाफत फुस्सवा देब्बा हुट्टे अदि एना नमाद कुरुमट्टका मिस्कित दियुमं हिंगा हिंगुं बाहुशी सवाबु लिबिनिवि इतुरु अळुकमकशे उगबत बुनु आमिरुगे किबा रिवावेगेंवे हमकशवरुं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस कुरेवि एव्वेस मुस्लिमकु वुलुको वुलु फुरिहमको देन एनागे नमादुगा कायम वेहुरे कियातकेति एनायं इंगे हालुगा कियवा एनागे नमादु फुरिहम कुफिनम एनागे मम्मा एना विहे दुहेके एफदांबा हालुगा मेनुवी एना नमादु नुनिकुन्न हुट्टे अबू हुरैरत के फान ग्यारिहुं रिवावेगेंवे हम कशवरुं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस कुरेवी एकमकुं अल्लाह ताला कुफ्फाफत फुस्सवा दरजतं उफुल्लवा कमिग्गे मच्च तियबामी हुन्न तिमं कलेगे फान मगुदक्कवं हेजे एबे कलुं देन्नवुए ए अल्लाह के रसूलाय आदेहे हदीस कुरेवी फिनिगद कमुं नुमत एनुमवेस कमकुं उंदगु वेगेंबा हालत तहुगावेस रिवेतिकुं फुरिहमय वुलु कुरुमा मिस्कित्तक दियुमा गिन फियवळुतं एळुमा एबही गिन गिन मिस्कित्तक दियुमा नमादक फहु नमादकं इंतिजार कुरुमे फहे एई रिबाते मि रिबाता मेदु इल्मवेरें वाहक दक्कवाफवे ए मानेग एई हेयो अमलुगे मतीगा मेदुकेंडुमें नेति कायमवे फरुवा तेरिवे हुरुं अब्दुल्लाह बुन बुरैदागे किबा रिवावेगेंवे एनागे बप्पा विदाळवे एद्दुहकु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिंदुनु कुरव्वा बिलालगे फाणग गुवालव्वा हदीस कुरेव्वी ए बिलाले तिमं कलेगे फाणवुरें कुरिं तिबाय सुवरुगे वदेमुनी कोंकमकुं हेये हम कशवरुं इयेरे तिमं कलेगे फाण सुवरुगे वदेवडागे तिमे फहे एहिंदु तिमं कलेगे फाणगे कुरिफुळुमतीगा हेदुन तळुवा अडु एस्सेवीमे फहे बिलाल के फान दे नेवी ए अल्लाह के रसूल आए अलगंडु देरकु ए नमादे नुकुरा गुतक फहरे गावेस अलगंडु बंगी एनुगो अमे आदि अलगंडु वुलू नुकुरा गुतक दुहाकुवेस अलगंडु हदस वेरी एनु अमे ಫಹೆ ರಸೂಲುಲ್ಲೋ ಸಲ್ಲಲ್ಲೋ ಹಲೇಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಹದೀಸ್ ಕುರೆವಿಯೆ ತಿಯಕ ಮಟ್ಟಕೆ ಎಬಹಿ ತಿಮಂ ಕಲೇಗೆ ಫಾಣವುರೆನ್ ಕುರಿಂ ತಿಬಾಯ ಸುವರುಗೆ ವದೆವುನಿ ತಿಯಹೆಂಬಿಗೆನ್ನೆ ಅಬ್ದುಲ್ಲೋಬುನ್ ಒಮರುಗೆ ಅರಿಹುಂ ರಿವಾವೆಗೆಂಬೆ ಹಮಕಶವರುಂ ರಸೂಲುಲ್ಲೋ ಸಲ್ಲಲ್ಲೋ ಹಲೇಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಹದೀಸ್ ಕುರೆವಿಯೆ ತುಹುರಿಗ್ಗೆ ಮತೀಗ ವುಲೂ ಕೊಫ್ಫಿ ಮೀಹಕ ದಿಹ ಹೇಯೋಕನ್ ಲಿಯುಬೆ ಹುಟ್ಟೆ

0: कुछ कमी सी लगती है।
1: हिग्याम अड़तक एहाम हिग्याम म्यूजिक आयकु नोदी हेकेर में कहा दिवे ही एफएम।

0: नुआ दी है के मेगाहर्ट्स दिवे ही एफएम मैं दुरो नमा दो वागो तु
1: अल्लाहु अकबर अल्लाह

0: दिवेही एफएम 90.1 मेगाहर्ट्ज़।
1: आम गोते गाहने की वारंग हंदार ने तेमी हैं। बाय दोस्तों खांग अने बाय दोस्तों फोनों जे मेल तब फोनों। बर्थडे से हंदांग कुरंग अधि माँ उन दोगु कमे। एक अमुक बिल ता दक्कन ता। दो हकुए संदान नुन तेने। करंट बिल, फेम बिल, फोन बिल कस दाहिन नुवान। हंदाम विसुरे। वगुतुं वगुता फाही पे में दुरी को फ्यासा वेस ट्रांसफर कुरेवे। क्या गें बिल कंडाला फा पेमेंट रिक्वेस्ट वेस फोनवे। साड़ी दो। गेम में गे रीचार्ज वेस हम फाही पेइंग। अनलिमिटेड रीलोड अधिरास्टस। फ्यासा गे हुरिहा मुआमलाते फाही पे में दुरी को। फाही पे वारा फाही।
2: जाबिरु के फान के की बैंग रिवावे के में एकले के फान विदाड़ में मिस्कितु के अल मस्जिदुल नबवी के वशाय के वातं हुस करेवुने दिन अबू सलमत के दारी कोड़ग मीहुं मिस्कितु के कैरिया बदल वुम बेनुं वी ए खबर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमे फोरमुं ए मीहुन हदीस करे वी तिबे मीहुं मिस्कि कैरिया नकुल वुम बेनुं वेगें उले खबर तिमन कले के फान लिबवडा के वी ए मीहुन देने वुए ए अल्लाह के रसूलाए आदे हैं हम कशवरुं अलगुन में एकम बेनु में फहे हदीस कुरे वी ए बनी सलमाए तेबे अमी हुं मिस्कित दियुम टका अला फियवलु तक हेव कंतके गिगोतुगा लियुवु मटका तेबे अमी हुं गे गेता हुगा तेबे अमी हुं उलेशे फहे एबे अमी हुं देने वुए अलगुन में बदल वु मकुं अलगुन में नकं उफले नुदे बेने नुवता अलगुन में मिहारु बदलवा करने दे में अबू मूसा ग्यारी हुं रिवावे के वे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस कुरे वी नमादा बेहेगुतुं एम्मे दारुम नुवत सवाब बोडुवे गेंबा बयकी नमादा दियुमं हिंगा मगु दुरुवे गेंबा मी हुन्ने देन जेहुनु एम्मे दुरुमी हुन्ने अदि इमामायकु जमातुग नमादु कुरुमट्टका नमादं इंतिसार कुरा मीहा नुवत अवह नमादु कुल्लागें निदा मीहाय वुरें दारुम नुवत सवाब बोडुवे गेंबे उबय्य बुन कौब गे किबा रिवावे गेंबे एकलेग फान विदाळुवे मीहाकु ओळुने एमीहाय वुरे मिस्किता दुरुग गेहुरि मीहाकु तिमन्नायं एंगिवडागें फेन्नुवे नमवेस एव्विस नमादें एना दुदेन्नुकुरे

स्पोर्ट्स बीट, स्पोर्ट्स बीट। नोदी है 1 मेगाहर्ट्ज़ दिव्य एफएम।

0: स्पोर्ट्स बीट, स्पोर्ट्स बीट।
1: नोदी है एक मेगाहर्ट्ज़ दिव्य एफएम।

साहेबान कदरदान मेहरबान, दिल थाम के बैठिए क्योंकि अब आपके सामने तशरीफ ला रही है आगरा की अजीम फनकारा मलिका हुस्न नूर नजर मोहतरमा मोहिनी।

0: मी मरियम रिफ्का रशीद, रिफ्का गार्ड, दिवे ही एफएम, दिवे ही नाइक, दिवे ही नाइक।
1: नोदिया एके मेगाहर्ट्स, दिवे ही एफएम।
2: लवे कफ़ा हो, लवे।

0: दिव्य ही एफएम होंगे नस्तनी
1: वायरल वाइब्स
2: एक गोयको तो मकबूल रसवा लवतका एक चार्ट तोगे एम ए टॉप लवतका अदे मिनोनस एक प्लेटफॉर्म तोगे एम ए वायरल लवता
1: वायरल वाइब
3: कौन में हफ्ता आएगे बस आदित्य दोहों के मेंदुरफा हो देख जहाँ रो रिपीट होम दोहों के रेगंड एकार जहाँ रो आदि अंगार दोहों के मेंदमो बाहर जहाँ रो
0: वायरल वाइब हमारे कहनी मोदी है कि मेगाहर्ट्स दिवे ही एफएम
4: मामा हालू की है ना
5: अल्हम्दुलिल्लाह दारिफुल मेंगे हालू की है ना
4: आरमें मिस रंगल मामा कौन का में तेरी कॉल्लनी गेने मामा आरमें आता
6: मामा ती हाँ बोल रखा मुले एंड कमर ने आरमें ती कं कॉल्ला फानो
5: दारिफुलो में हाँ इधर रंगले ती को ता मामा गातंग्यास मामा हालू बलाला मामा के कंतत ता कॉल्ले देती मामा वारंग उफावे
7: कामदा फिल्म में गनी की हावर का तो आया कि न मजावाब की
8: बड़े रंगल में गए
9: की न कुंदरी उलेनी खलाया नुला मिथुका बिंदु के दे निशाना नुला
7: एम कामदा फिल्म के एम खास कम की को बैठो आया कि न मजावाब की
8: फिल्म के हुरी हाँ कम है बस
10: एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू
7: एम कामदा फिल्म में गे मिंबर बनाला टेस्ट का तैयार तो है फिर नमो को बस जवाब की
8: है वाला तैयार
0: देहा सर्विस वाला हर दिवे ही फिल्म के रस्ते में मूवी मूड
7: एम का मुद्दा फिर मैं गेम में वर बाला लूँ दिवे ही फिल्म के टीमों मिजू हो रही तैयार तेरे फिर उन तैयार तो
0: मूवी मूड